0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: तू लव करती है ना मेरे से?
2: बस
1: लव है तो सब है।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
1: बॉलीवुड।

0: वेरी फ्यू टाइम्स इन लाइफ आई हैव गॉट द आई टोल्ड यू सो मोमेंट, लेकिन कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ. और जब इतने दिनों के बाद ऐसा मोमेंट हुआ तो थोड़ी डींगे तो मैं हांकूंगा ही.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: थोड़ी सी अपनी तूती तुम्हें बजाऊंगा. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, दैट वाज अरिजीत सिंह सॉन्ग. अरिजीत सिंह से याद आया कि देयर वाज दिस यू नो एंटायर What should I say? Controversy, a big piece of news that came out कि यार ये आवारापन नाम का गाना 11:11 पर इंडिया टाइम रिलीज होने वाला है on the 21st of July. It's going to be Arijit Singh's return, come back to playback singing. तो गाना रिलीज हो गया, लोगों ने सुना, हमने आपको सुनाया. उसके बाद जो मैंने आपको कहा था वही हुआ. अरिजीत सिंह टीम सेड के भाई नहीं, ये कोई कमबैक शमबैक नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दो सॉन्ग्स दैट ही ऑलरेडी संग एंड देयर इन द फ्रीजर, जो कि 2027 तक आप सुनने वाले हैं. डजंट मीन दैट ही इज मेकिंग अ कमबैक, ये ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड गानों में से है. बट जो भी है, मजा आया. नाइस पीआर स्ट्रेटजी आउट देयर. दिस इज द शो दैट गेट्स यू सेइंग यार नाइस नाइस एनर्जी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज एनर्जी इज दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सामग्री इन योर मॉर्निंग. द अदर थिंग इज ऑफकोर्स म्यूजिक. फ्रॉम टॉक्सिक तबाही कमिंग अप, विशाल मिश्रा का ये सुपर हिट गाना. इनकेस आपको कोई गाना सुनना है, किसी गाने को सुनकर लाइफ में थोड़ी कम तबाही लगती है, तो लेट मी नो. व्हाट्सएप कीजिए 0543091062, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 0543091062. दिस इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
7: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
8: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
9: Spin big with Big Ticket.
10: 20 million dirham grand prize.
9: 1 million dirham big spin chance.
10: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
9: Buy now at bigticket.ae.
11: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
12: Big.

0: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
1: Don't you just love how, you know, South actors, they have these little taglines for them. Insano ke tagline wahan par hote hain, jaise ki rocking star Yash.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: So, I'm going to chalta phir the marketing campaign, right? Yeah, but marketing to थोड़ी अच्छी थोड़ी खराब काफी तरह तरह की हो गई. टॉक्सिक नाम की फिल्म की ये आपने गाना सुना, तबाही, विशाल मिश्रा का ये गाना था. दैट इज टॉपिंग द चार्ट्स वर्ल्ड वाइड एंड इट्स एन अपकमिंग एक्शन क्राइम ड्रामा, तीनों ही इसके अंदर हैं. फिल्म डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास और काफी सारे कंट्रोवर्सी में काफी घिर गई ये फिल्म. बट या कनाडा सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश इज द हेडलाइनर एंड 26th ऑफ ऑगस्ट फिलहाल, राइट नाउ यू गॉट टू ऐड दैट फिलहाल टू इट, राइट? अभी तक 26th ऑफ ऑगस्ट इज द स्लेटेड डेट फॉर रिलीज एंड हियर्स व्हाट द प्लॉट इज गोइंग टू लुक लाइक. इट्स सेट अगेंस्ट द कोस्टल बैकड्रॉप ऑफ गोवा बिटवीन 1940s एंड 70s और ये कहानी एक रूथलेस येट इमोशनली स्कार्ड प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम राया है, विच ऑफ कोर्स इज द रॉकिंग स्टार यश, ही राइजेस थ्रू ब्लडशेड एंड आई कोट एंड बिट्रेयल टू डोमिनेट द लोकल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड ओनली टू डिस्कवर द हैवी पर्सनल टोल दैट एब्सोल्यूट पावर डिमांड्स. कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी हो गई सुबह सवेरे, बट या दैट इज वन फिल्म दैट लुकिंग इट्स लुकिंग वेरी वेरी स्टाइलिश, वेरी एक्सपेरिमेंटल एंड ऑफ कोर्स साउथ इंडियन मूवी है तो फिर वो स्लो मोशन एंट्रीज तो होंगी ही. स्लो मोशन में दिन एंटर करता है हमारा, बट इसको सुपर फास्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है बिकॉज वी गॉट सो मच ऑफ एनर्जी ऑन द शो, सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट. साथ में सम बिग प्राइजेस इंक्लूडिंग द बिग बॉलीवुड क्विज कमिंग अप राइट हियर ऑन बिग 106.2. हियर्स अरिजीत सिंह विद तेरी मेरी कहानी.

0: खुला हुआ के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: वक्त।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो?
4: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
5: Sia Self Drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
6: Insurersmarket.ae. Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
7: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month. Are you ready?

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:09।
1: बॉलीवुड।

0: That's exactly what the spirit of this next thing is. There's a new feature on the show that's called Wake Up with Sid.
1: Arey, with add karo, with.
0: Because Sid wakes up really, really early in the morning. So, wake up Sid. Wake up with Sid. That's the name of this feature. And Rose, I do a bit of a vibe check, a mic testing. Testing 1, 2, 3. Ke kitni energy aap ke paas hai. And I'm going to give you some clues about a particular thing. Ek cheez, jo ki it's creating news early in the morning on this 22nd of July. Kuch aisi cheez space mein, antriksh mein discover kar di gayi hai. जो कि पहले कभी नहीं की गई थी, राइट? दैट्स मेकिंग न्यूज ऑल अक्रॉस सोशल मीडिया एटलीस्ट. सो हियर दीज क्लूज एंड देन अगर आपको समझ में आता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, गिव मी अ कॉल, लेट मी नो 800-1062 पर. नाउ द फर्स्ट क्लू इज दैट दिस वाज नोन एज वाइट गोल्ड इन द 16th सेंचुरी, बिकॉज वे बैक देन, मतलब 400 साल से भी ज्यादा पहले, इसका एक चम्मच वुड कॉस्ट 5 pounds इन लंडन. मतलब अगर यूरोपियन नोबिलिटी को दिखाना होता कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, तो वो सोने का नहीं, इस चीज का इस्तेमाल करते थे. इट वॉज कॉल्ड वाइट गोल्ड. ऑलराइट, समटाइम्स दिस थिंग विच इज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन स्पेस, विच ऑल्सो इक्वल्स टू साइंस ऑफ लाइफ, इज ऑल्सो यूज एज ए नेचुरल वूंड हीलर. अगर आपको चोट लग गई तो आपकी दादी माँ कहेंगी कि ये थोड़ा सा लगा लो तो चोट जल्दी से हील हो जाएगी. देन दिस इज one of the few things, or the only thing that we human beings are born craving. Yani ki naturally hame sirf is cheez ki talab lagti hai. Kis cheez ki main baat kar raha hu? If you figure out what I am talking about, known as white gold in the 16th century, also known for wound healing, and you know, we human beings have an inborn craving for this. And finally, of course, recently it's been discovered in space, which equates to signs of life इन आउटर स्पेस. अगर आप समझ गए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आपने इस चीज को लेकर दिन की शुरुआत की हो. गिव मी अ कॉल, लेट मी नो 800-1062 पर. प्लेट फॉर प्राइड, नॉट फॉर प्राइज. Rather the revenge se Didi Shreya Baloch version coming up in just a while. The other option we're taking part in this is you can WhatsApp me 054-309-1062. This is the Big Breakfast with me, Sid. Big 106.2.

0: listening to The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
5: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
4: या राइट,
5: नो, इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with henna speedy easy hair color. Made in Italy.
6: Namaste.
7: Hola.
6: Assalamualaikum.
8: Bonjour.
9: Ni hao.
8: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
10: InsuranceMarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. InsuranceMarket.ae.
0: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
13: It is 8:17 on the clock and air quality काफी आज poor रहने वाली है all through the day. Lots of dust blowing, visibility might get affected sometime, especially at night. That's what the NCMS said. 34 degrees Celsius right now, humidity at 69%, winds blowing at 18 kilometers per hour. Partly sunny शुरुआत हुई है दिन की of this Wednesday. Highs of 37 right now, lows of 33 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: big with Big Ticket.
1: 20 million dirham grand prize.
0: 1 million dirham big spin chance.
1: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
0: Buy now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: This summer, there are surprises all across Dubai waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
4: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Mix with Zora, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
5: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
4: The Big Mix. मिस किया गया
6: तुम कर ही नहीं सकते चाहो भी तो नहीं कर सकते हो
7: अनुक्षा हाय पहले तो मुझे बताओ अनुक्षा कि हाउ मेनी टाइम्स हैव पीपल मेस्ड अप योर नेम एंड कॉल्ड यू अनुष्का
8: जिलियन टाइम्स
7: बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग टू एनीवन बाय दिस नेम अनुक्षा मुझे जेन्युइनली लगा कि आपने अपना ही नाम गलत बता दिया है मुझे Because Anuksha is a very unique name. What does it mean?
8: It means perfect. Nooks in Hindi is false.
7: What an Anuksha irony. Means... Perfect naam ko imperfect tarike se 50,000 baar logon ne bula hoga. Anushka karke.
8: I know.
7: Meant
8: Tell
7: to
8: me about
7: be
8: it.
7: Mujhe abhi batao ki filhal ye jo char clues maine diye the, kis actor ki baat ho rahi hai?
8: The one and only Vicky Kaushal.
7: Absolutely. Vicky Kaushal pasand hai aapko?
8: Love him.
7: Kisko nahi pasand hai yaar? Matlab, he's so charming.
8: So good.
7: So charming, hai na?
8: I love the way he respects women and the way he is with his wife.
7: Are you married to a Vicky Kaushal in real life?
8: Yes.
7: Oh my
8: much.
7: God! आपके विकी कौशल का नाम क्या है?
8: संदीप.
7: अरे so nice. अनुक्षा and संदीप की जोड़ी. I hope आपकी भी विकी और कटरीना की तरह जोड़ी बनी रहे.
4: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
9: ठीक 8:30 लेट्स टेक अ लुक सबसे पहले एट द जंक्शन ऑफ 44 एंड 311 जेबीटी में आपको मिलेगी 4 से 5 मिनट की देर एन इंसिडेंट इज बीइंग रिपोर्टेड आउट देयर इफ यू हैव मोर इन्फो अबाउट दैट देन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल 800-1062 पर 44 पर हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे भी आपको मिलेगी 3-4 मिनट की देर आज मैदान स्ट्रीट पर हेडिंग टुवर्ड्स बोलिंग सेंटर यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन एंड दिस इज गोइंग वेस्ट टुवर्ड्स E11 स्पीकिंग ऑफ व्हिच हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा गोइंग टुवर्ड्स देरा Al-Nada interchange one is getting really busy. Also 311 per going south in the same direction going towards city center Mirdif. That entire stretch from city center Zaya, you'll find a bit of a slow moving traffic. Then there's 611 as well. Jahan par milegi 4 se 5 minute ki der heading south going towards Al-Aweer.
4: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीम देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: And don't forget, insurancemarket.ae के 30,000 Google reviews हैं with a 4.8 star rating, built in the UAE, trusted across the UAE. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. insurancemarket.ae coming up in just a while. इधर तो एक बार मैं हूँ ना. A classic शाहरुख खान number. खामोश क्यों हो जो भी कहना. Speaking of शाहरुख खान. उनकी किंग इज रिपोर्टेडली हेडिंग इनटू इट्स फाइनल इंटरनेशनल स्केड्यूल. आप स्केड्यूल बोलते हो, शेड्यूल बोलते हो. यूएस एंड साउथ अमेरिका में शूट प्लान बिफोर इट्स डिसेंबर रिलीज विंडोज. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एसआरके.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
2: नाम है सिड. ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: इंश्योरेंस मार्केट .ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
4: Namaste.
5: Hola.
4: Assalamualaikum.
6: Bonjour.
7: Ni hao.
6: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
2: The Big Breakfast, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big 106.2. That's My Song by E. And.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 9:12 मिनट, दैट इज ऊंचा लंबा कद फॉरएवर फ्रॉम वेलकम टू द जंगल. वेलकम टू द बिग बॉलीवुड क्विज,
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: अब बॉलीवुड के कीड़े तो हम सभी हैं, राइट? आई मीन वी आर ऑल बिग बॉलीवुड फैंस. इनफैक्ट वी कॉल ourselves द बीट ऑफ बॉलीवुड, दैट इज व्हाई रोज सुबह अ चांस फॉर यू टू गेट योर हैंड्स ऑन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. नाउ देयर इज सम न्यूज कमिंग इन बॉलीवुड न्यूज. एक फिल्म जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, इट इज ऑफकोर्स रामायण. और रामायण में अभी तक खबर ये थी दैट अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू बी प्लेइंग जटायु, लेकिन नितेश तिवारी की रामायण में जटायु इज नाउ, ऐसा सुन रहा हूं मैं, नॉट गोइंग टू बी प्लेड बाय अमिताभ बच्चन, बट इट्स गोइंग टू बी प्लेड बाय अनदर एक्टर. ये एक्टर कौन है, इनकी आवाज मैं आपको सुनाने वाला हूं इन वन ऑफ माय फेवरेट 90s गोविंदा मूवीज. या उसमें ये बंदे भी थे, इनकी आवाज सुनिए और बताइए कि कौन है.
2: तुमने मेरे कायदे प्लस कानून की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ी?
3: पढ़ी थी सर.
2: झूठ बोलते हो तुम. पढ़ी होती तो तुम्हें 13 नंबर कानून अच्छी तरह याद होता. क्या है शर्ट बाहर क्यों तुम्हारा? बाहर क्यों है? हिले क्यों तुम? अटेंशन में हिले क्यों तुम?
3: नहीं सर, वो
2: लगता है तुमने मेरा कायदा नंबर 10 नहीं पढ़ा.
3: गलती हो गई, लेकिन पढ़ लूंगा सर.
2: कहां से आए हो?
3: बॉम्बे से.
2: बॉम्बे कहां है?
3: महाराष्ट्र में.
2: महाराष्ट्र कहां है?
0: महाराष्ट्र में. हाँ, ये कौन है? हु इज दिस पर्सन जो हु इज आस्किंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस? अगर आपने आवाज पहचान ली है, वी आर हियरिंग दैट ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग जटायु इन रामायण, द फिल्म दैट एवरीबडी इज वेटिंग फॉर. इफ यू नो द करेक्ट आंसर, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. यू कुड विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.

0: अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: नमस्ते।
2: ओला।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: बोंजूर।
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
5: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: मॉर्निंग ठीक 9:15 ऑन दिस वेडनेसडे की सुबह, 22nd ऑफ जुलाई। होता है कभी कभी, इट्स पार्टली सनी पार्टली क्लाउडी स्टार्ट टू दिस डे। 35 डिग्रीज सेल्सियस ह्यूमिडिटी एट 68%, हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर पर आवर, हाईज ऑफ 37, लोज ऑफ 33 डिग्रीज सेल्सियस।
5: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: This is Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ भाई. गुड मॉर्निंग अशरफ भाई, क्या हाल चाल है?
2: वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर सेज.
0: मिस्टर अशरफ, आज के दिन के बारे में क्या स्पेशल है बताइए. आज कितनी एनर्जी से आप घर से निकले हैं और क्या खाया आपने ब्रेकफास्ट में?
2: ब्रेकफास्ट में तो मैंने जो है एक ऑमलेट खाया था एंड देन ऑफ कोर्स पराठा, द वी लव पराठा.
0: ऑमलेट पराठा मुंबई, साथ में थोड़ा सा चिली सॉस या ग्रीन चटनी है?
2: नॉट, साथ में द वाइफ लव.
0: बहुत ही चीज़ी था, चीज़ ऑमलेट तो नहीं था कहीं?
2: वेरी चीज़ी
0: ऑमलेट आपके डायलॉग की तरह बिल्कुल, पर अच्छा था, चीज़ी था लेकिन अच्छा था. दिन की अच्छी शुरुआत हुई, ऐसे ही मक्खन मारते रहो, चीज लगाते रहो, तब जाकर दैट इज द की टू ऑल सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स. सो वेलकम टू द शो अशरफ भाई. आपने कहा कि आप बहुत ही बड़े फिल्म फैन हैं, तो सबसे बड़ा टेस्ट तो आजकल यही है, क्या आपने वो काम किया जो करना हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं? डिड यू गो एंड सी द ऑडिसी? टिकट्स मिले?
2: Yeah, Odyssey, yes, of course we found the ticket.
0: मतलब you are one of those people जो कि pre-planning करते हैं. That is the true proof that you are a big film fan.
2: Thank you so much. Of course we plan about like 3 weeks earlier, then we should go for the same day. And we found the ticket and it was, I can say the show was completely full.
0: Yeah.
2: And it was a fantastic movie. Hmm. Starting with some sorrows and other.
0: Yeah.
2: But it takes us like in a beat of that what we were waiting for. It was not, the movie was not all about the battle. It's about the survival, that how you can survive and how you can support to your team. So it was giving like a very positive spirit and energy to reach to your destination back to your home.
0: क्या
2: so
0: बात
2: that was a fantastic movie.
0: फिल्में देखते तो आप अच्छा है ही, रिव्यू भी काफी अच्छा करते हो यार, मतलब एंड दिस इज एक्चुअली क्रिस्टोफर नोलन ऑलरेडी इट्स हिज हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम, सो गिवन दैट इट्स अ नोलन मूवी दैट्स सेइंग अ लॉट. लेकिन यार अशरफ, मैंने ना बहुत ही हटके मूवी रिव्यू देखा एंड यू नो व्हाट द रिव्यू वाज अबाउट, कि व्हाइल वॉचिंग द फिल्म ओडिसी वो कौन से मौके हैं जब आप उठ के बाथरूम जा सकते हो. क्योंकि 2 घंटा और 52 मिनट की ये फिल्म है, पीपल इन द वेस्ट आर नॉट यूज्ड टू दिस, ये दिस इज नॉट फॉर देसीज, क्योंकि हमारी तो फिल्म अमूमन 3.5-4 घंटे की होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग तो इस मामले के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. लेकिन पीपल इन द वेस्ट दे नीड अ गाइड एक्चुअली, कि कौन से वो मोमेंट्स हैं इन द फिल्म जहां पर यू कैन एक्चुअली अफोर्ड टू एक्चुअली मिस अ बिट ऑफ द एक्शन. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट.
2: I don't think so that any movement that
0: एक भी मूवमेंट नहीं आपके हिसाब से?
2: No, I couldn't find even the every single movement was giving you some sort of shocking that what is going to be happen, because as soon as they reached to the one of that island at the first that they found, like we talk about like one of that monster that come like the jaws and other thing.
0: बस ज़्यादा मत बताओ अभी बहुत सारे लोगों including me, मेरे को भी देखना है अभी तक यार, मेरे को टिकट ही नहीं मिले, आप पता नहीं.
2: You can go and kill it.
0: Yeah, so Ashraf, thank you so much for that review and thank you so much for taking part in our contest. एक हमारी जो खुद की एक ओडिसी बन रही है, at least epic proportions की, it is रामायण, और बहुत सारी you know अफवाहें उड़ रही थी कि अमिताभ बच्चन is going to be playing जटायु, लेकिन it has been खारिज करोड़, and एक एक्टर की आवाज मैंने लास्ट टाइम आपको सुनाई थी and he is actually going to play जटायु. What is the correct answer? डॉक्टर डैंग. ओहो, इस थप्पड़ की गूंज आज तक मेरे कान में. बट अशरफ यार, मजा आ गया आपसे बात करके, कांग्रेचुलेशंस, ये 2 ओपन मूवी टिकट्स आपके हो गए. देयर इज नोबडी इन द यूएई राइट नाउ हु डिजर्व्स दीस टिकट्स मोर देन यू. थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग टू अस.
2: ऑलराइट,
0: टेक
2: केयर. थैंक यू सो मच 106.2 एफएम. आई एम लिसनिंग सिंस 2000.
0: वाओ, दैट द या
2: वी वेरी गुड.
0: वी आर द ओल्डेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द यूएई, यू नो दैट राइट?
2: Yes, of course. I know that one of that Kabia was there, the old. The
0: yes, yes. Lots of history, lots of legacy with this frequency. Thank you so much for listening to us. Yeah. टेक केयर मैन, टेक केयर. दैट इज अशरफ, हमारे आज के विनर है. एंड अगर आप भी बॉलीवुड के बड़े फैन हैं, दिस इज टेलर मेड फॉर यू. दिस कॉन्टेस्ट इज कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड. कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल, वन रियल बॉलीवुड सॉन्ग. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड. गुड मॉर्निंग.
1: बिग आप सुन रहे हैं बिग 106.2.
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
3: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
5: नमस्ते।
6: ओला।
5: अस्सलाम वालेकुम।
7: बोंजूर।
8: नी हाओ।
7: डिड यू नो? Now just type and rent a

0: इंस्टाग्राम का प्लॉट चिकन्स गहरा होता जा रहा है उसका प्लॉट है। कोई मुझे प्लीज बताएगा कि ये लोग एक बार में थोक के भाव में सारे चेंजेस क्यों नहीं करते यार, ये इंस्टॉलमेंट्स में चेंजेस क्यों करते रहते।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: नहीं, of course I know, I exactly know why they do it, because I mean imagine if they do it in one झटका तो खत्म हो गई बात ना। This way we always keep talking about Instagram, कि अब क्या लेटेस्ट यार, अब क्या किया उन्होंने। So what is the latest thing that Instagram has done is that you can now change the music of a post after you've posted it, right? So you don't have to like kind of, पहले क्या था कि अगर आपको कोई किसी पोस्ट का म्यूजिक चेंज करना है, इट गॉट फ्लैग्ड फॉर सम रीजन, खुदा ना खास्ता और समथिंग लाइक दैट, देन यू हैड टू टेक इट डाउन, यू नो, री अपलोडेड एंड देन पुट दैट म्यूजिक अगेन, दिस दैट, जितना एंगेजमेंट था वो सारा का सारा वहाँ पर खारिज हो जाता है। यू हैव टू डू इट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम स्क्वायर वन। अब ये नहीं करना पड़ेगा, यू कैन एक्चुअली एडिट ओनली द म्यूजिक इन केस यू हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। दैट्स द लेटेस्ट। है जवानी तो है इंस्टाग्राम तो अपडेट आना है। लॉट्स कमिंग अप ऑन द शो इंक्लूडिंग द फैक्ट कि रोहित शर्मा ने थर्ड ओडीआई के बाद क्या किया, अभी भी वो यूके में क्या कर रहे हैं भाई।
2: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
3: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
4: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island. Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
5: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
6: Spin big with Big Ticket.
7: 20 million dirham grand prize.
6: 1 million dirham big spin chance.
7: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
6: Buy now at bigticket.ae.
8: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNC's apply.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 9:43 on the clock. Let's start with the capital, Abu Dhabi. Everything seems to be smooth flowing except the usual. Heading towards Banias, heading north E11 per Mafraq industrial area. Mein pata nahi aajkal kyun traffic rehne laga hai. Aaj bhi hai, 5 se 6 minute extra lekar hi ghar se nikalega. Agar ye rasta aapke kaam ke raste mein aata hai to. Then there is 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries will have the usual 6 to 7 minutes ka delay. Beirut Street, Damascus Street getting busy as we speak. Then there is S112 Sharjah industrial area 6 mein. In both directions, east and west. Also, a bit of congestion outside University City in Sharjah. Then there is 611 Emirates Road, all the way from Hey Barashi, Nasba Central Park, ke through jata hua traffic till Al Awir. You'll find 4 se 5 minute ki der.
1: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एंड टॉकिंग अबाउट शरारत, अगर आपसे कोई कहे कि 2 अगस्त यानी कि 10 दिन के बाद दिन में रात होने वाली है तो आपको भी यही लगेगा ये क्या मस्ती कर रहा है, डोंट डू शरारत यार।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: लेकिन नहीं, इट्स द मोस्ट अवेटेड सेलेस्टियल इवेंट दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द 2nd of August 2027। अगले साल अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट दिस ईयर। नाइट इज एक्चुअली गोना फॉल एट मिड डे, दोपहर के 12 बजे ऐसा लगेगा कि यार रात हो गई। इट्स अ साइट दैट द वर्ल्ड इज नॉट गोना विटनेस फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। 2114 में ऐसा दोबारा होने वाला है। सो 2nd August 2027 द लॉन्गेस्ट टोटल सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स ऑफ द सेंचुरी इज गोना अकर। इट्स कॉल्ड द ग्रेट नॉर्थ अफ्रीकन इक्लिप्स एंड इट्स गोना डार्कन पार्ट्स ऑफ North Africa, Southern Europe and the Middle East, underline, bold, italic, Middle East bhi, for a full 6 minutes and 23 seconds at midday, is going to seem as if raat ho gayi hai. Longest on land this century, the moon fully block karega Suraj Chachu ko and it's going to reveal the solar corona to millions. And I know you're curious about the Middle East, ke kahan kahan se ye pass hoga. So in detail, it's going to pass through Spain, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Saudi Arabia, Yemen, and then Luxor, Egypt is going to have the best viewing spots. Lekin UAE ka naam is list mein nahi hai, but I'm sure there are going to be some effects of this total solar eclipse. The biggest, the most dramatic one. The next time you'll have to wait till 2114. Tab tak to hum sab bhag bhag. From Delhi Valley, this classic coming up in just a while. Ram Sampath, this is The Big Breakfast with me, Sid.
1: Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:08।
1: Bollywood.

0: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy, through the MyAlfred app. InsuranceMarket.ae.
1: 10:18 in the world of technology, you know, doesn't just surprise you these days. It absolutely shocks you.
2: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: And when you kind of merge technology with the world of dating, matlab shock pro max ho jata hai. So that's exactly what's happened. Catfishing to aapne suni hogi. But have you heard of this concept called chat phishing? Kya ho raha hai ki log zyada singles are now turning to ChatGPT and Claude LLMs to actually chatfish matches. What is the definition of that, of chatfishing? Is that message likhne ke liye, apna profile improve karne ke liye, conversations ko analyze karne ke liye, with potential matches, log ChatGPT ka istemal kar rahe hain. 26% of adults and 49% of Gen Z daters have actually used AI for dating help. Aur kyun na ho, kyun na ho? और जब इन डेटिंग वेबसाइट से पूछा गया या अबाउट दिस कि डू यू एक्चुअली स्क्रीन फॉर एआई रिटन मैसेजेस, देन दे सेड नो, हमें क्यों करना है स्क्रीन भाई, आपकी लाइफ है, आप कितना यू नो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इज द फैक्ट कि आप एआई को कितना यूज कर रहे हो, राइट? सो व्हाई शुड वी, हम क्यों करें, तुमको जो करना है करो. बेसिकली हम इतना पैसा इतने इस टेक्नोलॉजी पे क्यों करें खर्च. दे आर नॉट कन्विंस्ड येट एंड एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट दिस इज एक्चुअली सीकिंग हेल्प. जब एक्सपर्ट से पूछा गया, साइकोलॉजिस्ट से पूछा गया कि ये एक्चुअली डज इट क्वालिफाई एज चीटिंग, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, राइट? कि इफ यू आर एक्चुअली यूजिंग एआई इन द वर्ल्ड ऑफ डेटिंग, हर और चीज में ठीक है, लेकिन अ पर्सनल थिंग लाइक डेटिंग, इफ यू यूज एलएलएम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह, क्लॉड, डज दैट क्वालिफाई एज चीटिंग? बिकॉज यू एक्चुअली यूजिंग समबडी एल्सेज और समथिंग एल्सेज लैंग्वेज, नॉट योर्स. एंड द होल पॉइंट इज टू एक्चुअली बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल, करेक्ट? सो yeah, it's a bit of a catch 22. I think I'm going to put up a poll about this on our socials. We are 106.2 Big FM on Instagram. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: It's 10:39 on the clock. मैं वापस आऊंगा, से इंस्पायर्ड, मैं वापस आकर आपको बताऊंगा कि कल जो पोल क्वेश्चन मैंने डाला था उसके रिजल्ट क्या हैं।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: On our Insta, which is 106.2 Big FM, 106.2 Big FM, that's our Insta handle. वहाँ पर follow नहीं करते तो क्या कर रहे हो यार? करो follow, उसमें बहुत मजा आता है. And कल मैंने एक poll question आपको पूछा था about this new Gen Z trend called lily padding, यानी कि ये कैसा फंडा है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉर्पोरेट सीढ़ी को चढ़ना है अगर आपको, तो द ओनली ऑप्शन अकॉर्डिंग टू Gen Z इज टू कीप चेंजिंग योर जॉब एवरी सिंगल ईयर. इसी से आप लाइफ में, कॉर्पोरेट में आगे बढ़ पाओगे. डू यू अग्री विद दिस कि मतलब हर साल बाय डिफॉल्ट आपको चेंज करनी है जॉब, नो मैटर हाउ हैप्पी यू आर, दैट्स द ओनली वे टू गेट अहेड इन लाइफ. एंड आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज 71% ऑफ यू, 71% ऑफ यू आर अग्रीइंग विद दिस, सेइंग कि हाँ भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं Gen Z. इफ यू आर एबल टू डू इट, अगर ऐसा कर पाए तो वाई नॉट. हाँ मतलब बात में दम तो है यार, क्योंकि हर साल जॉब चेंज करना इज ऑल्सो नॉट ईजी. इट्स लाइक वन ऑफ दोज, साउंड्स लाइक वन ऑफ दोज न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो कि रखता हर कोई है, लेकिन मेंटेन बहुत कम लोग कर पाते हैं. कॉकटेल 2 से बंधु 2.0 कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. आज भी बहुत कुछ यू कैन एक्सपेक्ट ऑन आर इंस्टा पेज 106.2 बिग एफ एम.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। Big 106.2

0: सिर्फ नैना ही नहीं, हर किसी का कहना है कि इफ यू वांट अपग्रेड योर एसयूवी देन जेटोर आर द पीपल फॉर यू.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Yep, every weekday morning from 7 to 11, this show is brought to you by Jetour. You can drive home your dream SUV this summer with Jetour's unbeatable offers. VAT on us or 0% interest, free service package included, 1 million kilometers ki warranty, EMI started just 966 dirhams per month. Visit kijiye Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of the Elite Group Holding, T's and C's apply. On that note, it's time for me to zoom out of the studios. I'm going to be seeing you tomorrow morning, just like every weekday morning, like I said. तो अगर आपको वो 6 o'clock का हैंगओवर है तो उसको थोड़ा चेंज करना, एडजस्ट करना पड़ेगा योर एक्सपेक्टेशन. 7 to 11 इज द शो, द बिग ब्रेकफास्ट, द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग. आई एम गोना बी सीइंग यू टुमारो, लेकिन डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल. इन द मीनवाइल वी आर 106.2 बिग एफएम लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू, एंड आई एम सिड सेठ, SIDSETH. टिल टुमारो, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वेडनेसडे. बाय बाय.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
2: हाय टीना.
3: हाय.
2: इतना ही ब्लश कर लिया.
3: मेन कैरेक्टर है ना इस फिल्म के.
2: सो क्यूट यार, यू आर सो इजी टू प्लीज. मतलब कुछ भी प्यार से बोल दो आप हंसते लग जाओगे. द लेटर आई एम गिविंग यू इज द लेटर एस. एस से आपको मुझे बताना है सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: सायरा बानू.
2: वेरी गुड. अब एस से बताओ मूवी का नाम.
3: साथ तेरे.
2: है साथ तेरे. You're just making stuff up.
3: Okay, Sadhya.
2: चलो, I'll give it to you, Sadhya. Okay. अब S से बताओ place. टीना. आप ना शारजा जाओ और शारजा से वापस मत आना.
3: I was just looking into the Indian map, you know, in my imagination. And I did not think about Sharjah.
2: Oh my God. S से बताओ thing. You are such a sport, yeah, Tina. आपसे बात करके बहुत मजा आया. गेम में चाहे आप फ्लॉप क्यों ना रहे.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by InsuranceMarket.in.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: फिर आफ्टरनून 1:08 हो चुके हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Good afternoon, Hanji. Zohra ke saath on The Big Mix. Filhal hum khel rahe hain The Big Bollywood Undercover. Mujhe bahut maza aata hai yaar when I put down some clues that I feel like so nice. So, इसमें टीज करने में बड़ा मजा आएगा तो मुझे ओके आई डोंट वांट टू गिव स्पॉइल इट एनी मोर आई एम जस्ट गोना गो स्ट्रेट इनटू द क्लूज ही इज आई थिंक सब ब्लश करने लग जाते हैं इनका नाम जैसे ही दिमाग में आता है सो लेट्स सी आपके दिमाग में उनका नाम आ पाता है कि नहीं ओके ही वॉज ओरिजिनली बॉर्न एज फरहान एंड वर्कड एज अ मीडिया प्लानर बिफोर बिकमिंग अ मॉडल एंड इवेंचुअली बिकमिंग एन एक्टर ठीक है ही हैज द क्यूटेस्ट डिम्पल्ड स्माइल ही इज ऑल्सो संग अ सॉन्ग इन द मूवी रॉकी हैंसन And he is a well-known motorcycle enthusiast. Massive collection hai superbikes ka inke paas. And I think sabse pehle dhoom to inhone hi machayi thi. He was originally born as Farhan and worked as a media planner before becoming a model and eventually an actor. Sabse pyari dimpled smile inki hai. He sang a song in the movie Rocky Handsome and he is a well-known motorcycle enthusiast. Massive collection of superbikes hai inke paas. And I feel ki agar dhoom sabse pehle machayi thi to wo inhone hi machayi thi. Aapko pata hai kiski baat kar rahi hoon main? ये क्यूट थोड़े से इंटिमिडेटिंग लगते हैं लेकिन जब स्माइल कर देता है बड़ा अच्छा लगता है हु एम आई टॉकिंग अबाउट इफ यू थिंक यू नो द आंसर गेस द बॉलीवुड सेलिब्रिटी मुझे कॉल करके बताना है 800-1062 पे दैट्स 800-1062

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
0: आ रहा है देखिए। ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island. Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo, खुश हुआ।
6: सुभाष मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप रियलिटी टीवी शोज देखते हो?
7: कोई भी नहीं देखता हूँ। मेरी बीवी सब कुछ देखती है, मैं कोई भी नहीं देखता हूँ।
6: तो ये रिसर्च ही कहती है, जो लोग रियलिटी टीवी शो देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ड्रामे, बहुत कलेश होते हैं, वो रियल लाइफ में बहुत पेशेंट होते हैं और बहुत ही ड्रामा फ्री होते हैं। तो आपकी बीवी देखती है, तो मुझे बताओ क्या वो जिंदगी में बहुत ही काम, बहुत ही पेशेंट?
7: सच में गड़बड़ हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि ये सभी रियल है।
6: तो मतलब नहीं है वो शांत स्वभाव की?
7: अरे ऑनियर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना थोड़ा।
6: तो मतलब यू डिसएग्री विद द रिसर्च, बिकॉज योर वाइफ वॉचेज अ लॉट ऑफ रियलिटी टीवी, तो शी इज हैज जीरो पेशेंस, शी इज ड्रामेटिक।
7: उतना मत बोला करो, घर जाके खाना खाना होगा।
6: बट यार मैं खुद बहुत रियलिटी टीवी देखती हूँ। अब आप जो है मुझे सुनते हो, आपको लगता है कि मैं ड्रामेबाज हूँ कि नहीं? मैं बहुत शांत। क्या हाँ,
7: इंडस्ट्री में काम करते हो तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है।
6: मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की हूँ, सुशील, सुंदर, शांत।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लेकर शारजा की तरफ जाते हुए आपको मिल जाएगा ट्रैफिक। दिस इज स्टार्टिंग D93 रबात स्ट्रीट गोइंग ऑल द वे इंटिल मलीहा रोड। आपको मिलेगा 8 से 10 मिनट का वहां पर डिले। फ्यू कार एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड। अगर आप अलमनामा स्ट्रीट पर है, देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन D77 गोइंग टूवर्ड्स रसलखोर। आपको मिल जाएगा एक 10 मिनट का वहां पर डिले। उसके अलावा एक और कार एक्सीडेंट अलकूज इन रसल एरिया 2 के पास रिपोर्ट हुआ है, व्हिच इज कॉजिंग अबाउट अ 5 टू 6 मिनट डिले। दिस इज ऑन E11 अलखेल रोड। Any other traffic updates, you can let us know on our WhatsApp 054-309-1062.
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
10: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
11: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही, Zohra के साथ on the Big Mix. फिलहाल बात हो रही है on the Big Bollywood Undercover, एक ऐसे celebrity की जो दिखते बड़े intimidating हैं, but जब smile करते हैं, then you just feel like अरे इतने cute. फिलहाल मेरे साथ phone line पे दीपक है. दीपक, cute लगता है आपको ये?
2: Yes, of course. Actually, आपको पता है, मैंने जब आपने क्लूज सुना है तो मुझे ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था दो एक्टर्स में. लेकिन जब मैंने थर्ड और फोर्थ क्लूज सुना तब कंफर्म हो गया कि ये वही एक्टर जो उसके बारे में सोच रहा था. सिंपल तो आफ्ताब शिवदासानी को भी आते हैं.
1: अरे
2: बिल्कुल, लेकिन जॉन की तो बात ही अलग है.
1: और कोई मतलब सूझ रहा है आपको डिम्पल स्माइल जिनकी हो एक्टर्स में से?
2: एक्टर वैसे तो काफी सारे हैं.
1: आफ्ताब शिवदासानी, जॉन अब्राहम, नहीं जो फेमस है लाइक डिम्पल्स उनकी स्माइल के लिए.
2: डिम्पल्स के लिए
1: वरुण धवन की है क्या डिम्पल स्माइल? वो जो ऐसे टेढ़ी स्माइल
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, उतनी नहीं, उतनी
1: तो
2: नहीं है.
1: शाहरुख खान की भाई, हम शाहरुख खान कैसे भूल गए?
2: किंग खान ऑब्वियसली,
1: उनकी तो नंबर वन पे है यार.
2: एग्जैक्टली, ही इज द नंबर वन.
1: बट यस, जॉन अब्राहम इज द राइट आंसर. शाबाश, आप बड़े दिनों बाद आए, सही जवाब देकर गए.
2: मेरा मतलब ऐसा लग रहा है दुबई में मतलब जो वो आते थे इतना अच्छा मेरा कॉल लग गया. आई फेल्ट सो लकी.
1: सो गुड टू बी स्पीकिंग टू यू अगेन दीपक, बहुत अच्छा लगा.
2: ऑफ कोर्स, अब तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है भाई, मैंने इतना मिस किया दुबई को, इतना मिस किया क्या बताऊं.
1: होपफुली कि ये आपका थोड़ा लंबा टाइम रहेगा.
2: सोचो मैं जब लास्ट डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन पुणे एट माय होम टाउन, मैं जी भर के बारिश में भीगा हूँ. मैंने बोला भाई भीग लो जितना भीगना है, क्योंकि अभी उसके बाद पता नहीं कब भीगने मिलेगा. दुबई जाकर तो गर्मी में बुरी हालत. एंड आई कैन फील दैट हीट यार, ओह माय गॉड.
1: वो तो होगा ही, ये तो हमें मतलब आप दुबई में इतने साल रहे हो, आपको इतना नहीं पता कि यहाँ का मौसम कैसा होता है.
2: बट अचानक से मतलब क्या हो, वहाँ पर आदत पड़ चुकी थी ना, अभी
1: एकदम से स्विच है. हाँ बट चलो यार, मतलब ये गर्मी तो मतलब टेम्पररी है, हट जाएगी जब. आप मुझे बताओ चलो, जॉन अब्राहम की यहाँ पे बात हो रही है ऑन द बिग बॉलीवुड अंडरकवर. बॉलीवुड में आपका लग रहा है तो नॉलेज टॉप है ना?
2: थोड़ा सा सोचता हूँ कि होता
1: है. अरे ये क्या हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आपका लगा, बहुत ही सही है.
2: है ऑब्वियसली है.
1: चलो मुझे तीन मूवीज बता दो जॉन अब्राहम के जल्दी से.
2: धूम, टैक्सी नंबर 9211 एंड और अभी
1: हो गई 9211 हो गई, निकल गई टैक्सी. नहीं यार, it was super fun talking to you once again and hopefully आपका time यहाँ दुबई में

0: जाए।
1: ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपसे बात हो गई, मतलब यार आई एम सो सो सॉरी यार,
0: मैं वेट कर रही थी कब आएगी तारीफ, कब आएगी।
1: सही में यार, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब फील सो, मुझे कसम से बोल रहा हूँ, मुझे इंडिया में बिल्कुल मजा नहीं आता। मेरे घर वाले, मेरा बेटा आई यस्टरडे कैप्टन रील रिगार्डिंग व्हेन आई कम बैक, मेरा बेटा मुझे मैसेज कर रहा है आप पर दुबई ने जादू टोना कर दिया है।
0: ऑफ कोर्स, और दुबई के लोगों ने भी किया है। चलो
1: ऑब्वियसली यार, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे आरजेस है, इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे आपके जैसे दोस्त है, तो क्यों नहीं होगा यार।
0: सो स्वीट यार, थैंक यू सो मच दीपक, सो सो फन टॉकिंग टू यू अगेन,
1: हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू सून, वेरी वेरी सून,
0: बाय,
1: टेक केयर, बाय बाय।
0: दीपक सही जवाब दे गए, जॉन इब्राहिम की ही मैं बात कर रही थी, ही वाज एक्चुअली नोन फरहान इब्राहिम ओरिजिनली, और इवेंचुअली जाके उन्होंने नाम बदल दिया, मॉडल बन गए, एक्टर बन गए, और अभी सबके फेवरेट है। इन ऑनेस्टी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट जॉन इब्राहिम मूवी, आई थिंक बहुत ही अनकन्वेंशनल एंड अनपॉपुलर ओपिनियन है, एतबार मूवी याद है आपको, बिपाशा बासु थी इसमें, बट ही प्लेड द रोल ऑफ अ साइको लवर, ऑब्सेसिव लवर, एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ हिज मोस्ट कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस।

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

मूवी का तो मुझे पता नहीं, मैंने कॉकटेल 2 नहीं देखी. सो नो कमेंट्स ओवर देयर. आई हैव हर्ड ब्रिलियंट स्टफ अबाउट कृति सैनन दो, दैट शी डिड अ फैब जॉब. लेकिन म्यूजिक को अगर कंपेयर किया जाए, ऑफ कोर्स वन और टू सॉन्ग्स कॉकटेल 2 के अच्छे रहे, बट ओजी इज ओजी फॉर अ रीजन. तेरा नाम जपदीप हिराज, जावेद बशीर की आवाज फ्रॉम द ओरिजिनल कॉकटेल राइट हियर ऑन द बिग मिक्स. इट्स 1:49 ऑन द बिग क्लॉक, हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो. यू आर विद मी ज़ोहरा.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, गुड आफ्टरनून। 2:08 हो चुके हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Kia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Fast Track Song of the Hour, Hanji, brought to you by selfdrive.ae. That makes sure कि यार आप टाइम वेस्ट करो ही नहीं. अगर आपको लगता है कि आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम स्क्रोलिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्पेशली टू फाइंड द राइट रेंटल कार, देन डोंट डू दैट. जस्ट मीट सिया, दैट इज सेल्फ ड्राइव्स AI कार रेंटल असिस्टेंट. बिकॉज सिया विल मेक श्योर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो. ऑल यू गॉट टू डू ओवर देयर इज टाइप योर बजट, आपका कार टाइप, एनी प्रेफरेंस दैट यू हैव, एंड सिया विल इंस्टेंटली रिकमेंड द राइट कार फॉर यू. तो यू विल नॉट इवन हैव टू यूज योर ब्रेन, क्रिएटिविटी. बस ये डिटेल्स डाल दो एंड सिया इज देयर फॉर योर असिस्टेंस. नो एंडलेस स्क्रोलिंग, जस्ट अ क्विक एंड इजी बुकिंग. विजिट सेल्फ ड्राइव.ae टुडे.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:06 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: इतना इंटरेस्टिंग पोस्ट यार, मतलब इतना ज्यादा रिलेट, हार्ड रिलेट मैंने किसी चीज के साथ रिसेंटली नहीं किया है. सो आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट वेयर अ जापानीज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपर्ट हैज स्पोकन अबाउट the messy things that you have or the clutter that you have in your house and what that clutter says about you. घर में मतलब आपने ऐसे एक साइड पे ऐसे कबाड़ा बना के रखा हुआ है, कपड़ों का एक चेयर होगी अलग से, बर्तन पड़े होंगे कहीं पे, जूते गंदे रखे होंगे, all of those things. अगर आपका ये messy सा atmosphere है थोड़ा सा घर पे, what it says about you as a person. ठीक है, let's get straight into it. The first one itself is something जिससे सबसे ज़्यादा relate किया मैंने, which is an overstuffed closet. मेरा तो ऐसे कपड़े गिर रहे होते मेरे मुँह पे every time I open the wardrobe, but yes, an overstuffed closet is something I have. And that what it means about, I mean, what it says about you is basically that you're holding on to the past. It says that you keep saving clothes, which means aap memories bhi save kar rahe ho, and you're trying to keep an old version of yourself that no longer matches who you have become or are becoming. So overstuffed closet ka matlab ye hota hai ki aapki personality aisi hai ki you have a habit of holding on to the past. I think I relate. I can't let go of the version that I used to be, memories wagera. I have to agree, yaar. I have to admit. As sad as that is, but I have to agree. Broken objects. बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है, कोई बहुत प्यारी सी चीज़ टूट जाती है, उसको आप फिर भी जोड़ के, टेप लगा के, ग्लू लगा के, पता नहीं कुछ कुछ करके उन टूटी हुई चीज़ों को रखते हो. What it means is that you have, you know, unfinished chapters. And sometimes you feel like you've gotten so comfortable living with broken things कि आपको realize भी नहीं होता है कि वो टूटी हुई चीज़ है, एंड दैट वो कभी जुड़ नहीं सकती. अ निग्लेक्टेड किचन. येस, टू मैनी पीपल जिनके मैं घर गई हूँ जिनको आदत है गंदे बर्तन अपने सिंक में रखने की, कि यार बाद में धो लेंगे, यार रात को धो लेंगे, मेड आएगी तो धो देगी. ये बहुत बुरी आदत है. बट वाई इट वॉट इट सेज अबाउट यू इज दैट यू आर ट्राइंग टू निग्लेक्ट योर सेल्फ. इट मीन्स दैट वेन योर किचन स्टेज मेसी फॉर टू लॉन्ग, यू आर ओनली सर्वाइविंग, यू आर नॉट लिविंग. You are just surviving for the sake of it instead of truly taking care of yourself. Last but not the least, a blocked entrance. मतलब अपने दरवाजे पे ही इतना सारा कुछ सामान बिखेर के रख दिया है. It means blocked opportunities. So when the way into your home feels crowded or neglected, it can reflect a mindset that hesitates to welcome new possibilities and opportunities. If you feel like you've been doing these things, it is high time you change. Overstuffed closet, पुराने कपड़े निकाल के फेंको. That is the number one thing I'm going to do. घर के सामने कचरा मत रखो. You know, get rid of those dirty utensils because that is, you know, you're just surviving. Yeah, thoda jio, thoda khul ke jio. And I think I absolutely agree with whatever this Japanese expert has said. What do you have to say about it? Agar aapke ghar mein, apart from these things, koi kisi aur tarike ka kabada hai, to batao. Maybe I might be able to check and find out ki what it means about your personality. You can let us know on our DM, which is 106.2 Big FM pe, or even call me 800-1062 pe.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo! खुश हुआ।
6: सुभाष मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आप रियलिटी टीवी शोज देखते हो?
7: कोई भी नहीं देखता हूँ, मेरी बीवी सब कुछ देखती है, कोई भी नहीं देखता हूँ।
6: तो ये रिसर्च ही कहती है जो लोग रियलिटी टीवी शो देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ड्रामे बहुत कलेश होते हैं, वो रियल लाइफ में बहुत पेशेंट होते हैं और बहुत ही ड्रामा फ्री होते हैं। तो आपकी बीवी देखती है तो मुझे बताओ क्या वो जिंदगी में बहुत ही काम बहुत ही पेशेंट?
7: सच में गड़बड़ हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सभी रियल है।
6: तो मतलब नहीं है वो शांत स्वभाव की?
7: अरे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता ना थोड़ा।
6: तो मतलब यू डिसएग्री विद द रिसर्च बिकॉज योर वाइफ वॉचेज अ लॉट ऑफ रियलिटी टीवी, तो शी इज हैज जीरो पेशेंस, शी इज ड्रामेटिक।
7: उतना मत बोला करो, घर जाके खाना खाना होगा।
6: बट यार मैं खुद बहुत रियलिटी टीवी देखती हूँ, अब आप जो है मुझे सुनते हो, आपको लगता है कि मैं ड्रामेबाज हूँ कि नहीं? मैं बहुत शांत। क्या हाँ,
7: इंडस्ट्री में काम करते हो तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है।
6: मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की हूँ, सुशील सुंदर शांत।
7: नहीं नहीं माने तो लगते नहीं है।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 63% पर है, हाईज आज इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे। ब्राइट एंड सनी डे, थोड़ा सा क्लाउडी है, लोज एक्सपेक्टेड टू टच अबाउट 33 आज शाम।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

बहुत ट्राई किया ये कोरियोग्राफी पूरी की पूरी जैसे है ना वैसे करने को, बहुत अच्छा नहीं लगा बहुत गंदा लगा जो भी किया. तो आई थिंक माई ओनली एडवाइस टू एवरीवन हु ट्राई टू डू द कोरियोग्राफी एंड वाज नॉट एबल टू पुल इट ऑफ, खुद की कोरियोग्राफी बनाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे लगोगे. विद दैट वी आर मूविंग ऑन इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो. आखिरी घंटे में वी आर गोना बी प्लेइंग नेम प्लेस मूवी थिंग. बहुत बहुत बहुत ज़्यादा मजा आएगा. बॉलीवुड में और इस गेम में अगर टॉप हो तो बस मुझे कॉल करो 800-1062 पे. प्ले नेम प्लेस मूवी थिंग इन द लास्ट आवर ऑफ द शो. दैट इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोहरा.

0: 106.2. That's My Song by E-End.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 4:04 हो चुके हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: टेम्परेचर थोड़ा बहुत गिर भी जाता है फिर भी ऐसे लगता है यार ये गर्मी मतलब ऐसे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। 36 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, ह्यूमिडिटी हैज गॉन अप टू 65%, ब्राइट एंड सनी डे, एक्सट्रीमली ह्यूमिड, लो इज एक्सपेक्टेड टू टच अबाउट 33 लेटर दिस इवनिंग।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Of course, नाचने देंगे, क्यों नहीं नाचने देंगे, लेकिन फिलहाल कुड़ी को खेलने दे यार, मुझे बस खेलना है ये गेम, बिकॉज मुझे बहुत मजा आता है. ग्रोइंग अप दिस वॉज माई एब्सोल्यूट फेवरेट गेम, सबसे बेस्ट टाइम पास था. मुझे लगता था ये अंताक्षरी वंताक्षरी से तो अच्छा है कि ये गेम खेलो, इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी, जीके भी आपका ब्रश हो जाता है. आई फील इट्स जस्ट अ फन गेम यार. नेम प्लेस एनिमल थिंग की बात कर रही हूँ, दैट आई यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, बट इसका ग्रोइंग अप मैंने एक बॉलीवुड वर्जन बना दिया, बिकॉज गेम तो गेम है लेकिन आप बच्चे तो नहीं रहे, बड़े हो गए हो, तो थोड़ा सा बॉलीवुड एंगल लेकर आते हैं, बिकॉज Come on, yeah. Who doesn't love Bollywood? So if you think you're good at Bollywood, knowledge आपका बढ़िया है, actors के बारे में, movies के बारे में सब कुछ पता आपको, then play name place movie thing with me, a Bollywood version of the game. All you've got to do to play with me is call me. हमारा toll free number है 800-1062. That's 800-1062. Get calling.
2: Yo yo yo yo. Got a nojla.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
6: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 427. इसका मतलब क्या होता है समझते हो? इसका मतलब होता है वक्त हो चुका है.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yes, वक्त हो चुका है to play name, place, movie, thing. To play with me today, आज की player का नाम है भाविका. Hi, भाविका.
3: Hi, Zohra.
1: How are you?
3: I'm good, how are you?
1: बिल्कुल ठीक. Are you excited to play?
3: Yes, I am.
1: कल से try कर रहे हो आप, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत अंदर से strong feeling आ रही है that you are like a 10/10 pro at this game.
3: Oh God, I don't want to jinx it, but
1: कल भी कुछ ऐसे ही हुआ था. समन वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड उनसे एक भी जवाब नहीं दिया गया. बट आई फील लाइक आप कर जाओगे यार. यू कैन डू दिस.
3: होपफुली.
1: हैव यू प्लेड दिस गेम बचपन में?
3: बचपन में ऑब्वियसली खेला हुआ है ये गेम.
1: ये फेवरेट था या कौन सा फेवरेट था? ऐसे दूसरे भी तो बहुत गेम्स थे ना
3: यार. और भी तो हम वो खेलते थे, हम लूडो खेलते थे एंड कैरम खेलते थे.
1: चलो लेट्स स्टार्ट. नेम प्लेस मूवी थिंग. दो राउंड खेलेंगे, एक थोड़ा सा इजी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट. ओके ओके लेट्स स्टार्ट. आज इजी लेटर मैं आपको दे रही हूँ. लेटर एल. एल फॉर लव. एल से बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: लारा.
1: शाबाश. एल से बताओ मूवी का नाम.
3: लम्हे.
1: वेरी गुड. एल से बताओ प्लेस.
3: लंदन.
1: अब एल से बताओ थिंग.
3: लैपटॉप.
1: है लैपटॉप. शाबाश. देखा इजी नो. ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट करें अभी आपके लिए. ओके आई एम गोना गिव यू अ लेटर जो सुनने में ऐसा लगता है बहुत इजी है बट थोड़ा सा ब्लैंक आउट हो जाता है इंसान. ये पहले हो चुका है. ओके द लेटर दैट आई एम गिविंग यू इज द लेटर सी. सी से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो. चार्ली चैपलिन. बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है. वो श्रीदेवी बनी हुई थी. See, I told you, C is a very tricky letter. ऐसे लगता है कि अरे C तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे but then नहीं आते. Like, who would think of Selena Jaitley? You tell me. Okay, C से बताओ movie का नाम.
3: चांदनी.
1: Very good. C से बताओ place.
3: चक्कर.
1: Very good. C से बताओ thing. है?
3: Cap.
1: देखा यार, this was all easy. Only the celebrity name पीछे रह गए. चलो यार, 9/10 still a very very good score. At least पूरी बेइज्जती तो नहीं की. एक राउंड तो जीते. You can proudly go tell your school friends की यार अभी भी खेलती हूँ, रेडियो पे खेल कर आई हूँ, pro. Have a great day ahead, Bhavika. It was super super fun talking to you.
3: Thank you.
1: Bye. नेम प्लेस मूवी थिंग. अगर आपको लगता है नेम मूवी सारा कुछ आपको पता है एंड यू विल नॉट यू नो हेजिटेट फ्रॉम गिविंग द राइट आंसर्स एंड इनकी तरह इनसे भी बेटर खेल सकते हो देन ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल अस ऑन आवर टोल फ्री नंबर. आई प्ले दिस गेम एवरी डे लास्ट आवर में. दिस इज नेम प्लेस मूवी थिंग. कॉल करो 800-1062 पे.

0: 101.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: बचपन में क्या बनना चाहती थी हिना?
3: बचपन में बहुत कुछ था, एयर होस्टेस बनना चाहती थी, पता नहीं क्या क्या बनना चाहती थी।
2: और क्या बड़े होके क्या बन गए हो?
3: एचआर।
2: कॉर्पोरेट की दुनिया के हिमेश रेशमिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपने बताओ कभी अपने एम्प्लॉयज को ऐसा स्पीच देने का कि नौबत आई कि नोबडी रिमेंबर्स द मैन हु केम सेकंड, एवरीबॉडी रिमेंबर्स द मैन ओनली हु कम्स फर्स्ट। सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग को याद करते हैं लेकिन चांद पे दूसरा आदमी, ऐसा कुछ दिया आपने कभी स्पीच
3: इस टाइप का? बट दूसरे मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत देने पड़ते हैं।
2: वाओ, सो यू आर लाइक प्रैक्टिस्ड इन द आर्ट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। तो चलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टाइम राइट नाउ, 30 seconds, यू गॉट टू मोटिवेट मी। ओके, व्हाट वुड यू से? Come on, go for it.
3: I mean, what should I say? You are already so motivated. We get motivated by you, by listening to you in the morning.
2: क्या बात है, मतलब कान ऐसे पकड़ के सीधा, मतलब उल्टा मोटिवेशन दे दिया यार। You are really good at your job, हीरा। I am sure lots of people tell you on a daily basis. लेकिन उनमें से 9 में से 10 लोग मक्खन मार रहे होते हैं।
3: मालूम है, यही चलता है।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: ट्रैफिक का हाल फिलहाल बढ़ता जा रहा है E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड। हैवी ट्रैफिक अभी से वहां पे, स्पेशली इफ यू आर Around the Warka 1 area, this is starting, in fact, D89 Kawaneed se shuru ho raha hai. This is going all the way until S112 Maliha Road. Bumper to bumper traffic aage jaate hue aapko milega wahan pe. No accident as such, but at least a 19-20 minute delay on that road. Multiple car accidents reported Nadal Shama area ke paas. This is Murdiv se nikal kar agar aap D83 East lekar ja rahe ho. Do accidents wahan pe report hue hain, which is causing at least a 12 to 15 minute delay on that road. Uske alawa thoda sa traffic aapko D89 Airport Street pe mil jayega, 5 se 6 minute ka delay. एनी अदर अपडेट आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, विच इज 0543091062।
0: सिया सेल्फ ड्राइव्स न्यू एआई असिस्टेंट हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। विजिट selfdrive.ae।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

यू यार, बड़ा अच्छा लगता है सिंगर इतने प्यार से क्यूटी पाई आपको बोलकर चले जाते हैं। फिलहाल विद दैट इट्स माय टाइम टू टेक योर लीव, मैं भी आपको क्यूटी पाई बोल के जाने वाली हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 5 PM। इफ यू एंजॉय द शो, एंजॉय द कंटेंट, मेक श्योर गो हिट अ फॉलो यार 106.2 बिग FM। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, DM कीजिए, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए वहाँ पे। ऑल्सो मेरी आवाज़ मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ज़ोहरा अमीन इज माई हैंडल ओवर देयर। आई विल नाउ सी यू टुमारो 1 से 5 के बीच। Until then, stay blessed and stay tuned. This is Big 106.2, the beat of Bollywood. NSR.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 5:06।
2: Bollywood.

0: नशे से चढ़ गई।
1: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
2: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Namaste.
3: Hola.
2: Assalamu alaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
7: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
8: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
8: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
11: 36 degrees है, लो जाएगा अराउंड 33, बहुत ह्यूमिडिटी है आज, इट इज 65% पर। सो या आज दिन में एटलीस्ट 5 बार आपने, मैंने, हम सब ने बोला है हाय कितनी गर्मी है, कब अच्छा मौसम आएगा, अभी टाइम है, अभी तो वेट करो, अगस्त आया नहीं है।
8: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
2: Big 106.2.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह है Big Thrill Mansi. दिन चाहे कैसा भी हो, शाम में माहौल बनना जरूरी है. And that's what we do every single evening. मैं आपको देती हूँ गाना गाने का मौका. अगर हर कैरियोके पार्टी में आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स आपको माइक ही नहीं देते हैं, आपसे माइक छीन लेते हैं, तो बस दिस इज योर प्लेटफॉर्म. अपना टैलेंट बाथरूम से बाहर निकालो एंड सबके सामने लेके आओ विद द कैरियोकी.
1: कैरियोकी
2: अब यहाँ पे प्रोफेशनल सिंगिंग की जरूरत नहीं है, बस माहौल बनाना है, परफॉर्म करना है, खुद भी यू नो यू हैव टू गेट योरसेल्फ एंटरटेन्ड एंड अदर्स एज वेल. एट द एंड ऑफ द डे माहौल बनाना इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बस कोशिश करना कि कानों से लोगों के दर्द ना हो. फिलहाल आज ये जो गाना है, जो ट्रैक है, ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है. इनफैक्ट आज जो ये वाइट सलवार कमीज मैंने पहनी है, उसके बाद तो मैं सुबह से सिर्फ इसी माहौल, इसी वाइब में हूँ. तो ये ट्रैक अगर आपने पहचान लिया है जो मैं सुनाने वाली हूँ, देन इट्स टाइम फॉर यू टू शोकेस योर टैलेंट विद द कैरियोकी.

अगर आपने गेस कर लिया है, चांदनी का गाना है. मतलब 90% लड़कियां वो येलो साड़ी पहन के स्विट्जरलैंड सिर्फ इस गाने को रिक्रिएट करने जाती हैं. याद आ गया तो 801062 इज द नंबर. थोड़ा बहुत गाना भी पड़ेगा, तो अगर आप गाते हैं तो बस सुनाओ मुझे. आज शाम फिलहाल वी गॉट एड शीरन विद अरिजीत सिंह.

0: बिग आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
4: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
5: It's hot it up with big tickets.
6: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
5: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
6: Buy now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Alright, not really big, but slow moving traffic. A from the Sheikh Mohammed bin Zayed, 17 se 18 minute ka delay filhal hai. There's heavy traffic though, Al Quds Industrial Area ke paas near MOE if you're on Barsha 1 and 2. Traffic kind of bumper to bumper. JLT se agar aap Marina ja rahe hain, also slow moving near Karama, Mankul and Udmetha. Sheikh Zayed pe filhal dikha raha hai 13 se 15 minute ka delay, but ye to bas shuruaat hai, aa gaya hai. Ye dekho hota hai kya? Filhal aap kahin aur atke hain, anything unusual you'd like to report? Do get in touch 800-1062 par.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
9: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

फायदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It's time for karaoke, and while you're stuck in jam, every single evening we jam. मतलब आप गाते हो, मैं आपको audience देती हूँ. Right now joining us is Atik. Hi Atik.
2: Hi, good afternoon. Mansi, कैसे हैं आप?
1: मैं तो ठीक हूँ सर. शाम हो गई है, आप काफी बिजी लग रहे हैं. वक्त का ख्याल नहीं है आपको, या तो मोहब्बत हो गई है?
2: बस हमारी तो दोपहर ही हमारी गुड इवनिंग स्टार्ट होती है.
1: How sweet. आपके फोन आते हैं ना, मेरे राइट हैंड में खुजली हो रही है. आई होप पैसा आए. फिलहाल अतीक क्या करते हैं आप?
2: मैं सिविल इंजीनियर हूँ.
1: वेरी नाइस. एंड गाना गाने का शौक रखते हैं?
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
1: मतलब आपसे माइक वाइक छीनते नहीं है ना, आपके दोस्त गाने देते हैं आपको?
2: गाने अलाउ करते हैं.
1: हाँ तो मतलब फिर आप थोड़ा बहुत आठवां या नौवां सुर लगा ही लोगे. ये गाना मेरा बहुत फेवरेट, इनफैक्ट ये पूरी मूवी, पूरी एल्बम मेरी फेवरेट है. मैं स्विट्जरलैंड भी बाय गॉड्स ग्रेस दो बार गई हूँ, बट कभी कोई ऋषि कपूर मिला ही नहीं मुझे जिसके साथ में ये गाना रिक्रिएट करूँ. तो आज आप ही ऋषि कपूर बन जाओ, मैं आपकी श्रीदेवी, और ये गाना गा दो. सर मैं ऋषि कपूर में खुश हूँ, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं. चलो जी, अब अतीक साहब ने कह दिया है कि ये काफी आला सिंगर हैं, तो सुनते हैं.
0: कारियोकी

0: रह न जाए गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा।
1: वाह यार,
0: दिल मेरे

0: पीछे पीछे गीत मिस्युआ।
1: वाह यार,
0: दिल मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिस्युआ। आगे आगे चले हम पीछे पीछे।
1: आप बहुत रोमांटिक हो मुझे ऐसा लग रहा है, हो ना?
0: बिल्कुल।
1: हाँ, वो रोमांस आपकी आवाज में एकदम साफ झलक रहा है, बड़ा अच्छा गाया यार।
0: शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच।
1: तो ये लोग क्यों कहते हैं, बीवी नहीं कहती है आपकी कि आप रोमांटिक हो?
0: नहीं, बीवी भी कहती है।
1: अच्छा, हाँ, बस बीवी को ही कहना चाहिए, मतलब अड़ोसी पड़ोसी कहीं अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत रोमांटिक हो। बारातीक, डू यू लाइक द सॉन्ग? आपने गाना गाया आज से पहले किसी और के लिए कि मैं वो पहली श्रीदेवी हूँ?
0: नहीं नहीं, बहुत लोगों ने गाया
1: है। ये देखो ये देखो,
0: बहुत मजा आया, I enjoyed it. You made my day.
1: Hi, you made my day, but you almost made my day. I thought I was the first girl you were singing this for, but आपने कहा तो लाइनें लगी हुई हैं।
0: बहुत सुनता हूँ आपको, लेकिन आपकी मतलब आवाज सुन के एकदम आदमी एनर्जेटिक आवाज है आपकी, लोग एकदम खुश हो जाते हैं आपकी आवाज सुन के, बहुत प्यारी आवाज है आपकी।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत मजा आया। लोग इस वक्त गाड़ी में बड़े खुश हो रहे होंगे आपका ये गाना सुन के। हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू सो मच।
0: सेम टू यू, बाय बाय।
1: दिस इज व्हाट वी डू। अगर आप कभी दिल कह रहा है कि यार मैं भी गाता हूँ तो गाओ, इट्स कैरियोके, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062 एंड व्हाइल यू आर एट इट, सम मोर म्यूजिक कमिंग योर वे।
2: Karaoke Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: दिलजीत दोसांज निकिता गांधी के आवाज फिलहाल आवाज मुझे आपकी सुननी है। वी आर हियर विद द कैरियोकी। अगर गाना आए या ना आए, गाने का दिल है, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062। कमिंग अप ब्रेक योर स्पार। ओए होए, बिछुरिया बिछुरिया, मुझे ओरिजिनल गाना भी उतना ही पसंद है जितना रिक्रिएटेड। इसी के साथ वी've got गुरु रंधावा विद दिस वन फ्रॉम धमाल 4।
1: कहर कुड़े अख तेरी मार दिया फेर कुड़े मोरनी जी तोर तेरी
0: राइट हियर ऑन बिग 106.2। द फोन लाइंस आर बजिंग। अब देखते हैं कौन आने वाला है कारियोकी करने।

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है। देखिए,
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, I'm Mansi, and every single evening while you're heading back home, you're stuck in traffic jam, we jam here with the karaoke. Joining us now is Murtuza. Good evening.
2: Hi Mansi, good evening.
1: कैसे हैं मुर्तजा, आपका दिन कैसा रहा?
2: दिन तो बहुत अच्छा रहा मानसी, अभी ऑफिस से निकला हूँ, तैयारी है।
1: क्या करते हैं आप?
2: आई एम वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर।
1: ओह वेरी नाइस, हाउ इज बिजनेस?
2: गुड, पहले से थोड़ा अभी अच्छा है।
1: चलो जी, और अच्छा हो ये हम सबकी दुआ है। एंड फिलहाल मुझे एक बात बताइए, आप गाना वाना गाते हैं?
2: मानसी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। क्योंकि मेरी जो लव स्टोरी है शुरुआत गाने से ही हुई थी।
1: ओए होए, मतलब गाना गा के आपने मना लिया उन्हें? हाँ, शादी के लिए?
2: एग्जैक्टली exactly. हम जब पहली बार मिले थे।
1: हाँ।
2: तो वो मुंबई में व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब, वहाँ पे जो ट्रेन में एक बीच में एक कोच आता है।
1: हाँ।
2: जो फैमिली के लिए होता है, तो हम उसमें ट्रेवल करते थे, तो वहाँ पे टाइम पास के लिए हम गाना गाते थे। तो अब जिनसे मेरी शादी हुई वो फर्स्ट टाइम आई, मैं गाना गा तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी, फिर वो रोज आने लगी।
1: वेरी फिल्मी, फैमिली कोच में बैठे बैठे फैमिली बना ली सर आपने, तो बहुत बढ़िया। बार बहुत हाई सेट कर दिया, अब हमारी उम्मीदें जो हैं वो काफी आपसे, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट डिसअपॉइंट। व्हाट अबाउट दिस मूवी, दिस सॉन्ग, डू यू हैव एनी मेमोरीज विद द सॉन्ग?
2: हाँ, मेमोरीज मतलब हम लोग साथ में मूवी देखने गए थे,
1: चांदनी आप दोनों ने साथ देखी थी? वाह, ये तो मतलब बहुत ही पुरानी आशिकी है, टच वुड नजर ना लगे।
2: हमारी शादी को ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए।
1: अभी भी गाते हैं जब वो गुस्सा हो जाती हैं?
2: हाँ, रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैंने उनका वही गाना, हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने वही गाना रिक्रिएट किया था।
1: Hi, I love old school romance. This is the kind of romance I'm manifesting, जो आज के बंदों में है ही नहीं यार। चलो अब सुनते हैं मुर्तजा की आवाज में गाना जो मेरा और बहुत सारे लोगों का फेवरेट है।
0: Karaoke.

0: मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा।
1: ओए होए, मुझे तारीफ करने की जरूरत भी नहीं है, जिन्होंने गाने के बहाने अपनी शादी कर ली, वो अच्छा गाते ही होंगे। बहुत कमाल गाया आपने, एंड आई लव्ड योर लव स्टोरी। हाय ऊपर वाले, मेरे मुर्तजा कब आएंगे जो गाना गा के जो है मुझे इम्प्रेस करेंगे?
2: आपको भी वैसा ही लड़का मिलेगा मानसी, जो अच्छा गाना गाता होगा।
1: और 23 साल बाद भी जो है वो गाए, भूल ना जाए अपना गाना।
2: श्योर श्योर, सच्ची मोहब्बत वही है ना।
1: आपने तो बिल्कुल यू नो स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया, बार बहुत हाई सेट कर दिया फॉर रोमांस। बट थैंक यू सो मच मुर्तजा, बहुत कमाल गाया आपने, और ऐसे ही गाते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस दिस इवनिंग।
2: थैंक यू मानसी,
1: बाय। दिस इज व्हाट वी डू एवरी इवनिंग, कहानी सुनते हैं, गाने गाते हैं। अगर आप भी गाना गाने का शौक रखते हैं, देन रजिस्टर फॉर कैरियो की 0543091062 पर।

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. Now, Mansi, this out of the show, we play this fun game. It's called the 5-second rule. Aapko milte hain 5 second. Main aapko deti hun kuch categories. Teen cheeze batani hoti hai. 5 second ke andar. Pata hai mujhe. Sounds very, very easy. Wait until you play this game. Agar khelna hai, तो 800-1062 मेरा नंबर है. फोन उठाओ, नंबर घुमाओ. वैसे इजी नहीं है सेटलमेंट करना सालियों से. ऑन द जूता छुपाई की रकम. अब यूपी में एक न्यूज वायरल हो रही है. 50,000 की जगह जिज्जा जी ने 5,000 दिए. कमरे में बंद करके काफी पिटाई हुई है उनकी. मोर ऑन दिस व्हेन आई कम बैक. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद माय एब्सोल्यूट फेवरेट शाश्वत सचदेव, जैस्मिन सैंडलेस.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 6:07।
2: Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
2: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: There's an excitement in the air. The whole city's waiting for the big match to start. And that's when Papa John's Pizza Tower makes the night complete. Three pizzas and sides, all in one towering box, in three sizes. Plus ice cold Coke, enough for everyone. Order now on the Papa John's app. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Missed your morning buzz?
5: Ye
4: suno.
6: Breakfast mein to maine jo hai ek omelet khaya tha and then of course the paratha. The we love paratha.
7: Oh, omelet paratha. Mumbai. Saath mein thoda sa chili sauce ya green chutney.
6: No, saath mein the wife love.
7: बहुत ही चीज़ी था, चीज़ ऑमलेट तो नहीं था कहीं।
6: वेरी
7: चीज़ी ऑमलेट आपके डायलॉग की तरह बिल्कुल, पर अच्छा था, चीज़ी था लेकिन अच्छा था। दिन की अच्छी शुरुआत हुई, ऐसे ही मक्खन मारते रहो, चीज़ लगाते रहो, तब जाकर दैट इज़ द की टू ऑल सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। आपने कहा कि आप बहुत ही बड़े फिल्म फैन हैं, तो सबसे बड़ा टेस्ट तो आजकल यही है, क्या आपने वो काम किया जो करना हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग कर पा रहे हैं? डिड यू गो एंड सी द ऑडिसी? टिकट्स मिले?
6: Yeah, Odyssey, yes, of course we found the ticket.
7: मतलब you are one of those people जो कि pre-planning करते हैं. That is the true proof that you are a big film fan.
6: Thank you so much. Of course we plan about like 3 weeks earlier, then we should go for the same day. And we found the ticket and it was, I can say, the show was completely full.
7: Yeah.
6: And it was a fantastic movie. The movie was not all about the battle, it's about the survival.
7: So that was a fantastic
4: movie. Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: कहते ना लोहा ही लोहे को काटता है। आज इतनी गर्मी में मैं बाहर काली कॉफी पी रही थी, किसी ने मुझे कहा कि आई कांट इवन इमेजिन हैविंग एनीथिंग हॉट राइट नाउ। आई सेड लोहा ही लोहे को काटता है, बहुत गर्मी है। इट इज 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, वेरी ह्यूमिड, 65% पे ह्यूमिडिटी।
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill. मैं हूँ मानसी. और लाइसेंस आने से पहले ना मुझे कार्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था, बट अब आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट कार्स. इफ यू इनटू कार्स, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग दैट मूव्स, यू हैव टू चेक आउट ऑटो ड्राइव. इट्स नॉट ऑटो, इट इज ओटीओ ड्राइव. दिस इज योर गो टू प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग ऑन मोबिलिटी, इनोवेशन एंड

0: categories here. You have to tell me three things from each category. Has to be fadafad and khadakhad within 5 seconds. Are you ready?
1: Okay.
2: 5 second rule.
3: Oh yeah.
0: Three things that you love about your job.
1: AC calculations.
0: AC? Time up. AC?
1: AC तो दुबई में
0: हर ऑफिस में होता है. Okay, moving on. Three करीना कपूर movies.
1: कभी खुशी कभी गम. फिदा.
0: हो गया. फिदा टाइम खत्म हो चुका है. Three things that you hate doing on the weekend.
1: Sleeping, driving, working.
0: Okay, three things that you should never say to your girlfriend.
1: That you don't look good. I'm so slow.
0: I hope आपकी girlfriend आपके बारे में ऐसा ना बोलती हो.
2: 5 second rule.
3: Oh yeah.
0: इस गेम में ना ज्यादा सोचना नहीं है. आप काफी सोच रहे थे, बट आई होप यू हैड फन.
1: डेफिनेटली.
0: तो अगर आपको भी खेलना है और गाड़ी में बैठे बैठे लग रहा है कि हाय आके तो जवाब ही नहीं दे पाया, देन इट्स वेरी वेरी इजी. गिव मी अ कॉल. ट्राई 800-1062 पर. कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9. मैं हूं मानसी. दिस इज द बिग थ्रो.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi, and we're playing the 5-second rule and badi kaam ki bandi aayi hai. And we've got Aisha who works for Diva. Hi, Aisha.
2: गुड इवनिंग.
1: पहले मैं काम की बात करूंगी. सो आई आस्क्ड माय चैट जीपीटी के मेरा बिल कम कैसे आएगा इन समर्स. तो उसने बोला एसी ऑन करके जाओ एट अ न्यूट्रल टेम्परेचर लाइक अ 24-23 डिग्री सो दैट एकदम घर हीट अप ना हो.
2: यू कैन गो एंड चेक आवर स्मार्ट लिविंग इनिशिएटिव एंड यू कैन फॉलो देम एंड जनरली एसी को टेम्परेचर यस कीप इट एट 24-25 द पीक आवर जिसमें जो है ट्राई अवॉइड using a lot of water, like, you know, if you want to do any washing, laundry or anything, vacuuming, try doing it in the morning time, 6 a.m. until 12. After 12 till 3 to 4, it's a peak time. So avoid using this time. Because this time, heat is rather okay, so more power or consumption is being utilized. So, of course, the utility will be higher.
1: उस टाइम तो मैं घर पे नहीं रहती हूँ. चैट जीपीटी ने कहा था वॉश योर क्लोथ्स रात को 10 बजे के बाद, तो उससे भी बिल कम आता है. सही बोल रहा है. मतलब चलो, थैंकफुली समबडी इज सेइंग दैट माय चैट जीपीटी इज गिविंग मी द राइट एडवाइस. फिलहाल आयशा, हाउ वाज योर डे?
2: ओह वेल, माय डे वाज वेरी गुड. सो राइट, आई एम जस्ट ड्राइविंग बैक फ्रॉम माय सिस्टर्स हाउस. सो इट वाज वर्क एंड देन माय सिस्टर्स हाउस एंड आई एम गोइंग टू माय होम.
1: Very nice, fun day. Chalo, we'll play this fun game. It's called the 5-second rule. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. You have to tell me 3 things from each 5 second ke andar.
2: 5-second rule. Oh, yeah.
1: Quickly name 3 things that are green in color and you can eat.
2: Seeds, grass.
1: Grass?
2: Cucumber.
1: Why are you eating grass? You work for Diva.
2: No, there's a grass which you eat, you know, like you drink off of that grass. It's that grass.
1: हाँ ये देखो, अमीरों वाली होगी कोई खास जो मुझे नहीं पता है. मूविंग ऑन क्विकली, नेम 3 संजय दत्त की मूवीज. ओके देन नेम 3 अक्षय कुमार की मूवीज.
2: ओके
1: व्हाट टाइम खालस फिनिश. 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें दिल आता है. दिल,
2: ये दिल, दीवाना.
1: वेरी नाइस. No, of course there is a song. Time is up. 5 seconds. You have to be very, very quick.
2: Okay.
1: 3 things people need to do to impress Aisha.
2: Honesty, caring, loyalty.
1: Oh, honesty, loyalty and caring attitude. Very nice. 3 things that you absolutely love about your job.
2: People, timing, flexibility.
1: Bolo na sarkari, that is the best thing. Aisha, it was a hit or miss, but thank you so much for helping us save our bijli ka bill. I'm going to follow everything that my chat GPT says from now on because Aisha ne bol diya hai ki wo sahi bol raha hai. Most of your answers were not within 5 seconds, but I hope you had fun.
2: I have fun. Thank you so much.
1: Thank you, Aisha. You have a great evening. Bye. Yeah, 5-second rule. मैंने कहा ना, it sounds easy, but ये easy नहीं है. अगर आपने खेलना है तो 800-1062 is the number to dial. 106.2

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill, Mansi. And of course, Asha, main aapko apni shaadi yaad dilwane wali hu, especially joota chhipai ki rasam. Ab ye story viral ho rahi hai. UP mein ek jijja ji ko bahut joote pade joota chhipai rasam ke chakkar mein. साली ने मांगी 50,000 रुपए एंड जीजा जी सेड मैं 5,000 ही दे सकता हूँ. 5,000 भी ले लिए और जूते भी मिले उन्हें. मोर ऑन द स्टोरी एंड सोचो आप कितने पे नेगोशिएट हुई थी आपकी जूता छुपाई वाली डील आशाम. वेल देयर इज अ पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. आई फील दिस इज नो मोर अ फन रसम. इट हैज बिकम वेरी कलेशी. सो गो एंड वोट 106.2 बिग एफएम. इट इज फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:08।
2: Bollywood.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. This is The Big Thrill. I'm Mansi. And 90s mein, thanks to this movie, ye trend shuru hua tha.
3: Dulhe ki saaliyo, hare dupatte waaliyo, joote de do.
2: एंड आज तक इस ट्रेंड ने शादियों में इतना कलेश किया है. अब यूपी की एक कहानी जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें जीजा जी ने बोला था 50,000 नहीं दूंगा सालियों को, 5,000 बोला कि मैं दे सकता हूँ. कमरे में बंद करके बहुत धुलाई हुई है जीजे की. फिलहाल रोहन मेरे साथ. हाय रोहन.
4: हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, हाउ आर यू?
4: बहुत बढ़िया.
2: रोहन, मैंने सही बोला ना कि जब तक ये मूवी नहीं आई थी हम आपके कौन, तो ये जूता छिपाई वाज नॉट अ बिग डील, बट विद टाइम इट हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग कलेशी इशू. आपको याद है आपकी शादी में ये जूता छिपाई आपकी सालियों ने कितना डिमांड किया था?
4: हाँ, बहुत एक्सपेंसिव अफेयर था.
2: कितना?
4: 1,01,000.
2: ओह, और ये किस ईयर की बात है? व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग?
4: 2017, 2018.
2: हो, 1,01,000 दिया आपने? फिर
4: देना पड़ा, बीवी ने भी साइड ले लिया उनका भी, क्या बोले.
2: तो आपकी तरफ से थे नहीं आपके फ्रेंड्स एंड आपके भाई एंड कजिन्स टू गेट टू अ डीसेंट डील?
4: नो, दिस वाज आफ्टर नेगोशिएशन.
2: तो उससे पहले क्या मांग रहे थे?
4: वो अभी ऑनेस्टली याद भी नहीं है, बट इट वाज अ वेरी बिग नंबर. नहीं, द प्रॉब्लम वाज 5 लोग थे, तो वो डिवाइड कर करके, अरे मुझे इतना ही मिलेगा, मुझे उतना ही मिलेगा करके.
2: तो जीजा जी को क्या उन्होंने टाटा बिरला समझ रखा था? जूतों का प्राइस क्या था?
4: अरे वो तो 2,000-3,000 के होंगे.
2: बहुत महंगे जूते पड़े, बहुत महंगे जूते पड़े.
4: जूते नहीं पड़ते तो जूते पड़ जाते.
2: वही तो मैं बोल रही हूँ, यूपी में एक दूल्हे को कमरे में बंद करके मारा है क्योंकि सालियों ने 50,000 मांगे थे, उसने सिर्फ 5,000 दिए.
4: नहीं, बट आजकल रेट तो बढ़ गया है.
2: यार बेचारा यूपी में छोटे से गांव का बंदा है, छोटे से गांव का बंदा है सर, वो 50,000 कहाँ से देगा? 5,000 में उसने सेटलमेंट मांगी, उसका जूते पड़ गए. अब आप हो 1,00,000 देने वाले 2017 में, 2027 तक 10,00,000 दे देते. आपको एट अ पॉइंट ऐसा लगा था कि क्या यार ये क्या इरिटेशन हो रही है, नहीं चाहिए मुझे जूते, मैं बिना जूते के चला जाऊंगा? नहीं, बीवी नहीं आती साथ में, फिर वो वहीं रह जाती, उसके बाद फिर आपका जो हाल होता है.
4: शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन.
2: या लॉन्ग टर्म गेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. है अभी भी कोई साली जो याद रखती है कि 1,00,000 दिया था जीजे ने?
4: हाँ, कभी कभी when we get into fight as in like in a playful way, like याद है ना तभी इतना चूना लगाया था कैसे हमने.
2: ये देखो मान भी रही है कि चूना लगाया था, बट जीजा जी देखो प्यार में चूना भी लगवा लिया. 1,01,000 का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच रोहन, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. एंड आज आपको आपकी जूता छुपाई मैंने याद दिलाई, घर जाके बीवी को फिर से याद दिलाना मैंने 1,01,000 दिए थे तुम्हारी बहनों को. चलो भाई. आपको याद है आपने अपनी जूता छुपाई में क्या नेगोशिएट किया था, कितने पे डील सेटल हुई थी, मुझे बताओ 800-1062 पे.

0: Big. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
3: Insurance Market.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
4: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
0: The Big Mix, miss kiya gaya?
5: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: हाय टीना।
7: हाय।
6: इतना क्यों ब्लश कर लिया?
7: मेन कैरेक्टर एनर्जी सुन के।
6: सो क्यूट यार, यू आर सो इजी टू प्लीज, मतलब कुछ भी प्यार से बोल दो आप हंसते लग जाओगे। द लेटर आई एम गिविंग यू इज द लेटर एस। एस से आपको मुझे बताना है सेलिब्रिटी का नाम। गो।
7: सायरा बानो।
6: वेरी गुड। अब एस से बताओ मूवी का नाम।
7: साथ तेरे।
6: You're just making stuff up. चलो I'll give it to you, साथिया। ओके, अब एस से बताओ प्लेस। टीना। आप ना शारजा जाओ और शारजा से वापस मत आना।
7: I was just looking into the Indian map, you know, in my imagination. And I did not think about Sharjah.
6: Oh my God, S से बताओ thing.
7: Thing.
6: You are such a sport, yeah, Tina. आपसे बात करके बहुत मजा आया। गेम में चाहे था फ्लॉप क्यों ना रहे।
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
8: Not really big, but patchy. If you're on Jeddah, there is slow-moving traffic near Dubai Festival City, Nadal Hammer and Rashidiya side. Merv to Mohesna, filal 23-minute delay. Similar traffic aapko milne wala hai agar aap Sheikh Zayed pe hain. 25 से 30 मिनट का डिले। पैक्ड है फहीदी अबू हेल डेरा साइड, इट इज स्टैंड स्टिल काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ऑल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक इफ यू आर अराउंड MOE इन बर्षा 1। एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट बताइए 800-1062 पे।
0: सिया, सेल्फ ड्राइव्स न्यू एआई असिस्टेंट हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। विजिट selfdrive.ae. बिग 106.2.

0: नहीं दे सकता जूता छुपाई के लिए, 5,000 ले लो। उनकी सालियों ने उन्हें कमरे के अंदर बंद करके धुलाई की है उनकी, पिटाई की है उनकी। राइट नाउ गॉट निगार विद मी। हाय निगार।
1: हाय,
0: हाउ आर यू?
1: गुड थैंक यू, हाउ आर यू?
0: सीम्ड वेरी टायर्ड, लॉन्ग वेडनेसडे। छुपाई वाली रस्म, यू आर ऑन द अदर साइड, आपने वसूली की है किसी जीजा से?
1: वसूली करनी चाहिए, बट माय जीजा वाज सो कंजूस, ही हैड टू जस्ट गिव अवे द शील्ड।
0: हाउ मच डिड यू आस्क?
1: 5,000, 20 इयर्स बैक।
0: रुपीज और दिरहम्स?
1: दिरहम्स।
0: 5,000 भी नहीं दिए? जीजा जी प्लीज कॉम्पेंसेट, साली इज कम ऑन एयर एंड इज कंप्लेनिंग, यार लोग एक एक दो दो लाख दे चुके हैं, 10 साल पहले माय जीजू डिड नॉट इवन गिव मी 5,000 रुपीज, कॉम्पेंसेट इन दिरहम्स नाउ, एटलीस्ट गिव हर 5,000 दिरहम्स, इज दैट अ गुड सेटलमेंट?
1: माय जीजा इज द मॉडर्न काइंड, सो इवन नाउ ही इज सो स्टिंजी, ही डजंट स्पेंड मनी, he's like, you people are earning, give me a drink, so I hope he's listening.
0: Wow, I mean, ये love marriage है क्या?
1: Chose no, it's an arranged marriage, so कुछ नहीं कर सकते।
0: पापा ने बहुत अच्छा लड़का चुना है दीदी के लिए।
1: He realized, I'm sure.
0: Future secure है। But very nice, yeah. This is the first that a sister-in-law literally gave up and did not fight.
1: No choice. You can't at that point in time.
0: यार ये तो देखो, जीजे को अंदर बिठा के पिटाई कर दी है सालियों ने, तो यू एक्चुअली आर अ गुड साली हु डिड नॉट रिजॉर्ट टू दैट।
1: अभी जीजे की रेडियो पे पिटाई हो चुकी है।
0: नाम भी ले लें क्या निगार?
1: नहीं।
0: Very nice. I love this. Revealing family secrets with Mansi this evening. But Nigar's Jiju, please, what is this? ये क्या बदनामी हो रही है आपकी? लेके जाओ वीकेंड पे, शॉपिंग कराओ निगार को, कुछ तो करो यार, शी डिजर्व्स इट, उनका हक है, साली है। एक्स्ट्रा साली चाहिए जीजा जी निगार के, अगर आप खर्चा करने के मूड में हो तो मैं भी बनने को तैयार हूँ।
1: मांगते रह जाओगे।
0: Oh God, love it. Thank you, निगार.
1: Bye. I'll call you back if you treat me, by the way.
0: Yeah, I would love to know this part two.
1: Sure.
0: चलो bye.
1: Thank you. Thank you.
2: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, यह है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्शन ब्लॉकबस्टर्स इन मॉडर्न इंडियन सिनेमा. आज ही के दिन 2011 में ये मूवी रिलीज हुई थी. दिस मूवी डिडंट जस्ट स्मैश बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, इट वाज अ मैसिव हिट. इट आल्सो गिव बर्थ टू एन एंटायर सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड लेफ्ट अस विद डायलॉग्स जो हम आज भी कोट करते हैं. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द मूवी. द मेन लीड बहुत ही ऑनेस्ट फियरलेस पुलिस ऑफिसर है एंड ही इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वेरी पीसफुल बॉर्डर विलेज टू अ करप्शन रिडन सिटी गोवा. इनका कोर बिलीफ है कि कुछ भी करने का, बस मेरा ईगो नहीं हर्ट करने का. जब भी उन्हें बहुत गुस्सा आता है, ही स्वाइप्स हिज क्लॉ लाइक हैंड्स अक्रॉस हिज फेस व्हाइल अ लायन रोर्स इन द बैकग्राउंड. एंड ऑफ कोर्स द आइकॉनिक डायलॉग जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज फिर सबको याद आ जाएगा द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द मूवी. अजय देवगन एंड हेलो, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी एंड फोन आने शुरू आ गए हैं. एंड ये मूवी भी रीमेक थी बट फिर उसके बाद बहुत सारे सीक्वल्स बने इस मूवी के. अगर आपको याद आ गया है 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Hello.
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
2: Hey,

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 35 degrees, low jayega around 33, humidity filhal 69% par.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Alright, celebrating this iconic movie जो आज ही के दिन 2011 में release हुई थी, The Birth of the Cop Universe. Well, the movie was released in 2011 and it was meant as a standalone action remake, but the huge success inspired Rohit Shetty जिन्होंने ये movie बनाई थी to expand it into Bollywood's first major cop universe, later bringing in a lot of sequels including Simba, Suryavanshi. Kajal Agarwal का हिंदी debut था, बहुत सारे hints दे दिए, नीलम जी आ चुकी है, मूवी कौन सी है नीलम?
3: सिंगम
2: इट इज. यार एक तो पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दीस मूवीज, मैंने एक भी मूवी देखी नहीं होती है. मैंने सिम्बा देखी है, मैंने सूर्यवंशी देखी है, सिंगम 2 भी देखी है, बट फर्स्ट पार्ट देखा ही नहीं है.
3: मैंने भी नहीं देखा यार सच में.
2: एंड ये मतलब क्लासिक्स हैं, लोगों ने कितनी बारी देखी हुई है.
3: बिल्कुल बिल्कुल, पर मैंने भी नहीं देखी, पर आपने जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया तो आई थॉट ओके, अजय देवगन और सिंह जैसा और कुछ भी बोलना नहीं है उसके नेचर के बारे में, तो गुस्सा नहीं दिलाना है तो सिंगम ही है.
2: डायलॉग याद है वो आइकॉनिक
3: डायलॉग?
2: अट्टा माझी सटकली. When was the last time नीलम को गुस्सा आया था और नीलम ने कहा था अट्टा माझी सटकली?
3: अरे वो आज सुबह ही हुआ है.
2: किस पे हुआ है?
3: क्या करें, अभी सर्विस इंडस्ट्री में ना तो क्लाइंट के साथ ही हो जाता है, पर सटकती है फिर वो अपने आप ही को कंट्रोल करना पड़ता है.
2: तो क्लाइंट को तो नहीं बोल दिया ना कि अट्टा माझी सटकली?
3: नहीं बोला, तभी तो फिर अपने स्टाफ को ही बोल दिया. कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है.
2: सिंगल हो आप?
3: नहीं यार मैरिड हूँ.
2: तो पति पे निकालो ना बेचारे, स्टाफ पे क्यों निकाल?
3: उसके लिए घर जाना पड़ेगा ना, घर जाके
2: फोन कर दो, हेलो लुकन मुझे गुस्सा आ रहा है, अट्टा माझी सटकली, और पूरा बस गुस्सा निकालो, फोन रख दो.
3: बेस्ट है, नेक्स्ट टाइम यही करने वाली हूँ.
2: हाँ यही करना, बेचारा स्टाफ की क्या गलती, मासूम सा स्टाफ है. पति को तो कोई ना कोई गलती याद भी नहीं होगी.
3: हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, हस्बैंड को याद नहीं रहती, पर बाद में जब याद आती है ना तो वो सिंगम बन के निकाल.
2: चलो नीलम और मैंने दोनों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंगम नहीं देखा है, तो ये हमारा वीकेंड का प्लान है, हम ढूंढ डांट के ये मूवी देखेंगे. एंड आज इस मूवी को 2011 से 2026 मैथ करो यार, नीलम मेरा खराब है. कितने साल हो गए?
3: 2011 से 26 25 15 साल 15.
2: खराब है, मैंने सही बोला क्या आपने?
3: खराब है 25 साल.
2: हाँ तो मैंने सही बोला था 25. हाँ
3: आपने सही बोला. हाँ
2: तो 25 साल हो गए हैं, वी सेलिब्रेटिंग द 25th एनिवर्सरी हियर. थैंक यू सो मच नीलम, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
3: यू टू.
2: बाय.
3: थैंक यू सो वेरी मच.
2: बाय नीलम.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

आई एम वेरी वेरी फिल्मी. आई एम श्योर पीपल हु नो मी बाय नाउ दे नो के मैं बहुत देसी, मैं बहुत फिल्मी हूँ. अभी मेरे ना दो फ्रेंड्स ने एक साथ मैसेज किया, चलो स्पाइडर मैन देखने चलते हैं. एंड मैंने बोला ये क्या है. आई एम नॉट इवन किडिंग, दैट वाज माई रिएक्शन. ये क्या है? Of course, I know Spider-Man कौन है, but मेरा recollection when you talk about Spider-Man is Rakhi Sawant. या फिर एक भोजपुरी गाना है, Spider-Man, Spider-Man. Hey, baby, let me see it. तो मैं wrong audience हूँ, मुझे मत लेकर जाओ Spider-Man. Coming up in just a bit. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: And it's your side. Time for me now to say goodbye, good night. I will see you tomorrow. It's a Thursday. फिर एक दिन और. स्कूल के बच्चों में और हम में कोई फर्क नहीं है. हम स्कूल में भी वीकेंड का वेट करते थे. हमारे स्कूल में हर सैटरडे छुट्टी नहीं होती थी. सेकंड सैटरडे का हम इंतजार करते थे. एंड आई थिंक लाइफ इज जस्ट द सेम एज एडल्ट्स. इट इज द वीकेंड. द वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर. इन फैक्ट एवरी सिंगल डे वी कीप यू कंपनी विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक हियर एंड अ लॉट ऑफ फन कंटेंट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. सो से हेलो टू अस देयर. 106.2 बिग एफएम. गो एंड follow us, show some love. You can say hi to me. I'm Mansi talking. And अब यहाँ से घर जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ. आजकल मुझे खाना बनाने का शौक है. मतलब पिछले 6-7 महीनों से मैं अच्छा खाना सुबह ही बना के आती हूँ और मैं देख रही हूँ लॉकअप. Oh my God, I am loving it. मतलब बहुत जमाने पहले मैंने reality shows like Big Boss देखना छोड़ दिया था. I think the last season that I saw of Big Boss was the Shehnaz Gill season. उसके बाद मैंने देखा नहीं है. Now I've come back to it. Thoroughly enjoying it. That's my dinner companion. Whatever you are doing, definitely keep in touch and stay right here. This is Big 106.2, the Beat of Bollywood, leaving you with

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द यूएई कॉल 800-ALFRED-247 Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2 the beat of Bollywood. The Big Chill brought to you by insurancemarket.ae.
4: insurancemarket.ae.
0: Big 106.2 the beat of Bollywood.

0: क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो किए दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।
1: तेरी

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।